एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद चक कर चिहन यर बरन जात यर पात नहन जेह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गणिजय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत सत जुग तय माण्यो शलियो बल बावन पायो त्रेतय तय माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तार्थ कियो उग्र सैन कौ राज अपय भगत है जन दियो कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चले अटल आ

साहिब जी तनासरी महला पहला कार पहला चौपद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जियो डरत है अपना कैसे ओ करी पुकार दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार जियो डरत है अपना कैसे ओ करी पुकार दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार रहा अनदिन सा

दूजा नाही कोए ताकी सेवा सो करे जाका नदर करे तुद बाज प्यार के सावड़ आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए जिस

0: पौड़ी वड़ी वड़ा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किछ जान ला, सब किछ तेरे बस तेरा घर पला, तेरे घर आनंद वदाई तुद कर, माण महता तेज अपना आप जर,
1: सर्ब कला भरपूर दिसै जतक तो, नानक दसन दास दे जागे बिन बता सलोक, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दया दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाईया उभरियाईया वाचै धर्म हदू, करमी आपो अपने।

गए मसकत कार नानक ते मुखे उजले केती छुटी ना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोह बचावहो। सुखी बसै मोर परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संघरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहौं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझै उबरियै, मरण काल का त्रास निवरियै। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करियहो रक्षा। राख लेह मोह राख नहारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाय ब्रह्मा बप तरा, काल पाय शिव जू अवतरा। काल पाय कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुज रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुआ बैठा, कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव।
अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलिश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं

बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद न। सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है।

सगली थी ते पास डार राखी, अष्टम थीत गोविंद जन्मासी, परम पूले नर करत कचरायण, जन्म मरण तिरहत नारायण, रहाउ कर पंजी रखवायो चोर, ओह जन्म न मरै रे साकत टोर, सगल पराध देह लो रोनी, सो मुख जलाओ जित कह है ठाकुर जोनी, मरै न जनमै आवै न जाए, नानक का प्रभ रहयो समाए, क्यों कहो कृष्ण कृपा निद है,

फिर मिट्टे बनाए, अगादे अपै आद अद्वय अविनाशी, प्रेयं परा परम पूरन प्रगासी, पूर रहया सब ठाई हमारा खसम सोए। एक साहिब सिर छत दूजा नाहे कोई, ज्यो पावै त्यो राख राखण हारिया, तुझ बिन अवर न कोई।

रहो, जिस पास बैठिया सोहिया साबना दावेसाहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया साबना दावेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदार्थ पाया अनेक जतन कर हृदय राखिया। रतन न छपै छपाया ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदार्थ पाया अनेक जतन कर हृदय राखिया। रतन न छपै छपाया हर गुण कहते कहन न जाई, जैसे गूंगे की मिठाई। रहाउ रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई। कहो भीखन दोए नैन संतोखे, जह देखा तह सोई। रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई। कहो भीखन दोए नैन संतोखे,

पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय रखया रतन न छपैश पाया हर गुण कहते कहन न जाई।

0: संत जना मिल हर जिस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चात सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। श्लोक
1: पवन गुरु पानी पिता माथा तरत महत, दिस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत।

जी चक्र चेहन अर बरन जात अरपात नहन जहे रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत कहे अचल मूरत अनपौ प्रकाश

गया। हाउ विच सचार कूड़े आर, हाउ विच पाप उन विचार, हाउ विच नरक सुरगे उतार। हाउ विच हसै, हो विच रोवै, हो विच भरियै, हाउ विच धोवै, हाउ विच जाति जिन सिखोवै, हाउ विच मूर्ख।

0: अंतन पावत देव सबे मनो इंद्र महासेव जोग करी हुन भेद बिरंच बेचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुर ज्योत अर्जन माहे तरी।
1: एक मन पुरख ध्याए बरदाता संत सहार।

साच रहे सबको सच समावे रिग कह रहे आ प्रभु राम नाम देवा मैं सोर नाय ले प्रास्या है नानक तो मुखंतर पाहे जुज में जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया बिंद्रावन में कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ ना उखदाई अलहो भया नील बस्त ने कपड़े पहरे तुर्क पठानिया।

0: अंतर पूजा भड़क ते बासन जो तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाय तरन दा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवास श्री वगाए तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाथ ओना पे आवे ओई सा कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म तर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर तोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील बस्त्र पैर होवे प्रमाण मलेश तान ले पूजे पुराण पाक्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर कसैना जाना देखे चौका कड्डी कार उपराए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली प्रेम कहो नानक सच त्याई सच होवे ता सच पाए।

बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सांसवासा नाल निभाई तना दी कमाई दा